गोपाल महोत्सवादि सकलै रावेष्टितं सुन्दरम् रासकीर्णन तत्परं हरिहर

ज्योति राशेश्वर प्रेयसी पंचाध्याय लसत्तनुर्विजयते राशेश्वरी राधिका

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: हमारे अध्यात्म

0: says, if your deeds and if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwaguruji is trying to.
1: Vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam dhir vidya buddhi mind. Isko buddhi ko sadupyog mein lana chahiye. Dhi mani buddhi. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है धीमनी बुद्धि है माइंड ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
0: So our intellect and mind should be for good. It should be pure and this happens from the food.
1: विद्या
0: knowledge.
1: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे उलझावे नहीं. सा विद्या या विमुक्त ही. जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे उसका नाम है विद्या.
0: Vidya or knowledge is that what frees you, not what binds you, what doesn't cover you or what makes you bound, what makes you free.
1: आप उलझे नहीं हैं इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं है.
0: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
1: Hamare vedon mein sarvapratham do baat ki shiksha di gayi hai. Satyam vado, dharmam chara. Satya bolo, dharma ka acharan karo.
0: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
1: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
0: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
1: Ek hi sadhak ke liye. एक ही शिष्य के लिए एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
0: सो फॉर एनी साधका एनी भक्ता एनी डिसाइपल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग ऑल दीज प्राइमरी थिंग्स आर नेसेसरी एज अ बेस.
1: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है ज्ञान अलग है भक्ति अलग है ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
0: सो देर इज ओनली वन रोड विद अ डिफरेंट नेम्स. समबडी इज कॉलिंग योगा समबडी इज कॉलिंग ज्ञान समबडी इज कॉलिंग दिस और दैट. देयर आर नो डिफरेंट रोड्स.
1: बम्बई सूरत रोड प्राइमरी. सूरत बड़ौदा मिडिल. बड़ौदा रतलाम हाय रतलाम.
2: इज टेलिंग द मैप ऑफ इंडिया.
1: इंडिया सेम लाइक इट मेक द फ्यूचर. एक ही रोड के जैसे बंबई से सूरत बंबई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
0: So like when you start from Bombay going to Surat, this is called Bombay Surat Road. When you cross Surat, it's called Surat Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
1: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
0: The middle school is yog.
1: Yog mein आपके लिए 8 पुस्तक हैं जिनको आप

0: को ध्यान दे करके पढ़ के पास होना है.
1: So in the yoga there are 8 books in which you have to study and then pass.
0: यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान, अपने को नियमित करना, उस पुस्तक का नाम है नियम.
1: The book which tells us how to control ourselves is called Niyam.
0: Niyam. Yam, apne ko rokna.
1: Yam is the book which tells us how to stop ourselves.
0: Aur Niyam ka arth hota hai, jo yoga ke liye kaha hua, yogash chit vritti nirodha, wo Niyam ho gaya.
1: So Niyam is this first line that when your thinking stops, when your...
0: Niyam means kanun ko pass. पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
1: To follow the laws and rules, to put it in your life, this is called नियम.
0: यम नियम के बाद में आसन है.
1: After that is yasana.
0: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम. और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन. एंड द फोर्थ बुक अबाउट प्राणायाम इज हाउ टू कंट्रोल द एयर एंड यूज इट फॉर द प्यूरिफिकेशन.
0: आसन से आपकी बॉडी शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर 5 ईयर है, वो 5 ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए, सामान की, मटेरियल की, सामान की.
1: सो लाइक द आसनस प्यूरिफाई द बॉडी, मेक इट क्लीन, द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस 5 प्राणास, 5 टाइप्स ऑफ एयर, which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है short and sweet. समझ गए? प्रत्याहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से contact सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते.
1: सो प्रत्याहार इज टू विद्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में, इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: सो नाउडेज इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनस एंड प्राणायामस, व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी, बट यामा इन यामा द रूल्स ऑफ आउटर एंड इनर बिहेवियर दैट नोबडी टेल्स.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
1: So after the asana and pranayam pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: ये मेरा च्यवनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: So,
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
0: हमारा चेला है वो, इनको पता है सबको. तो उसमें ये है. अब इसके बाद में होता है धारणा. धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: So Dharana is the next book, fifth book, which says about it's our own capacity, our own capability and so on.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला. ओ भाई,
1: so you look,
0: संन्यास
1: what
0: लेगा?
1: Means धारणा
0: नहीं लेगा. नो धारणा.
1: Dharana means actually also concentration. So you look at my the Dolak person if he wants to have sannyasa. So he said no, thank you.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me you are a great person. You cleaned and purified, and you cross over 21 of your family lineage. All 21 generations crossed over this sansara. You are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली. तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो. तुम भी सन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नो नो नो नो नो.
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है. उसकी धारणा अच्छी नहीं है. उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person, and his concentration towards God, dedication is not there.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है, वो ध्यान business बन गया है.
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: So like this now, this meditation classes and so on, they are there just to make it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you, please take the money from me, and then I give you 5, 10, 20, 50, 100, or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 का ना, 500 का.
1: From all of this, you will take 500. 500
0: का ठीक है ना?
2: 2000
0: का बंद कर दिया मोदी ने यार. 2000 दे दे. 200 का नहीं. कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी, नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती
1: है. So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितोपि दुःखेन गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है.
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता.
1: There is a
0: family. क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: The for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि. हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्टैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्टैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते.
1: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ, देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी, देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ.
0: हमारे विश्व गुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में 2 प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प.
1: There are 2 types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: Sabikalp samadhi usko kehte hain, jahan par sadhak pakka hai. Aur usko upar uthane ka sadhan bhi sachcha hai. Aur jahan ki uska god, jo usko pana hai, wo bhi uski samajh mein hai, isko bolte hain sabikalp samadhi.
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है, जहाँ पर न तो शिष्य रहता है, न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं. Aham Brahmasmi.
1: So in Nirvikalpa, there is neither disciple, there is no guru. They both merge into the God. Aham Brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई. अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: So 12th class is भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं.
1: In the course of bhakti, there are 9 books.
0: नौ पुस्तकें

0: बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना, नहीं हमने सुनना चाहते।
1: सो फर्स्ट
0: श्रवण भक्ति,
1: सो फर्स्ट इज लिसनिंग, सो लिसन ओनली व्हाट विश्व गुरु जी सेज, नथिंग एल्स।
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो, ये कीर्तन है।
1: Kirtan or remembering is that you remember only the words of Ishwar Guruji, nothing else.
0: Yaad karo, to ek matra Guru aur Govind ko yaad karo, dusre ko nahi, ye smaran bhakti hai.
1: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. Charanon mein jhuk jana, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है।
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of master.
0: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की, दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है।
1: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं।
1: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next
0: दास्य, सेवक, शिष्य, उसको दास्य भक्ति कहा गया है।
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: दास, अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं।
1: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई और ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु।
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का विरोध व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं।
1: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप, इज व्हेन यू You believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
0: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नजदीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया, सखा मित्र, फ्रेंड।
1: When Arjun was with Krishna, he didn't. After some time, he stopped being his servant. He stopped being his sevak. He became his friend.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है। बोलो, महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबहरे चला चलूं। चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया। कहते आत्मनिवेदन।
1: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट।
0: वो आत्मनिवेदन है। आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं।
1: So it's a request of the soul that I want to live in that condition, I want to live in such a way like a God is living.
0: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए, वो क्या है, ज्ञान की भूमिका.
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one. Or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई.
1: Seven books.
0: उसमें पहली बुक्स क्या है, सुभिच्छा. क्या है भैया, सुभिच्छा. सुभिच्छा क्या है, बोलो. गुरुजी, अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम कहाँ मना.
1: First book is Svaicha, or the own desire, and you say, Gurudev, I want to live with you.
0: Acha, ab
2: dusra. Most welcome. I'm not stopping you.
3: I have no problem.
2: Come.
0: आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं. अच्छा, अब बोलो, गुरुजी.
1: गुरुजी.
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास.
1: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है, उसको कहते हैं विचारणा. उसको क्या बोलते हैं,
1: विचारणा.
0: उसको विचारणा बोलते हैं.
1: Vicharna means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
0: Tan Mansa. Iske baad mein jo hai, pustak hai, Tan Mansa. Guru se jab vichar milta hai, to jaise badi tanki mein se, pipe mein se paani aakar ghar ki choti tanki mein aane lagta hai, aise hi guru ka gyan shishya mein aane lagta hai. Isliye usko Tan Mansa bolte hain. Any connection, badi tanki se choti tanki mein connection.
1: So the next one is Tan Mansa, when the guru, the knowledge of the guru slowly starts to be transferred to the small pot of shishya, of disciple.
0: Sattvapatti. Ab chaturthi jo hai, gyan bhumi suvichha syat, prathama samudhairta, vicharana dutiya syat, tritiya tanumanusa, sattvapatti chaturthi syat, पंचमासन से आत्मका पदार्थ भावनी षष्टि सप्तमी त्रियगास्मृतम. तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते.
1: Sattvapatti is the next step when in guru and disciple there is no difference in their thinking and everything.
0: Padartha bhavani kehte hain. Padartha bhavani. Jaise aapko chai yaad hi nahi aave, coffee yaad hi nahi aave, chutney yaad hi nahi aave, rasgulla yaad hi nahi aave, ice cream, phir 15-15 injection.
1: So the next step is when you even don't remember, you know, neither any sweets or anything, any food you like. There is nothing there.
0: Padartha bhavani ka arth ye hai ki aapke samne stone ho aur aapke paas mein jo hai gold ho, is dono ko aap barabar samjhe, isko padartha bhavani bolte hain.
1: Padartha abhav, the detachment from the anything, is like you can have a stone or you can have a gold, for you this is equal.
0: Nahi pehle asanshakti. Asanshakti ye hai, asanshakti isko kehte hain ki kabhi koi relation mein aapke mother hain, father hain, brother hain, wife hain, children hain, koi bhi hai, inme aap guru ko chhod kar inme aapke man ka nahi jana, usko bolte hain Asan Shakti.
1: Asan Shakti is when you don't think and then you go back to your family, to your brothers, sisters, wife, parents and children.
0: अब तो हमारा एक ही नारा ना हम किसी के ना कोई हमारा.
1: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
0: पदार्था भावनी जहां सोना मिट्टी बराबर लगे कोई भी उपलब्धि कोई भी प्राप्ति संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा.
1: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
0: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था परीक्षित को तक्षक काटेगा और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा ईयर वो क्या ना बोलते उसको
1: सांप सांप स्नेक
0: स्नेक वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
1: So like in the in Bhagavad there is this a curse of a king.
0: इसको पदार्था भावनी बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस नहीं हुई डरने लगे. और कृष्ण भगवान ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक नचैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मार्ग. आपको शस्त्र नहीं काट सकता पवन नहीं उड़ा सकता पानी आपको जो है भिगा नहीं सकता है हवा आपको उड़ा नहीं सकती है. ऐसा आपका स्वरूप है उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी. उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं.
1: So this is that book Padarthabhav. There is no fear of snakes. There is no fear of death. There is no fear that the fire will burn you. You will drown in the water. That anything will happen with any element. So this is the highest form.
0: Duriya avastha usko kehte hain jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho. और आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
1: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट इट डजंट अट्रैक्ट.
0: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की वर्क की वो हमने सफल कर दिया.
1: सो इन आवर लाइफ्स from the starting point we have to pass all these tests and we have to convince the guru and the god that we did and then whatever you invented in us whatever you effort you put in us it was successful so we passed all these exams this acharya ji is telling to us that we should success we passed and we should successfully pass all Vishwa Guruji's tests or effort what he gave we should fulfill all his wishes.
0: Purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnameva avashishyate. Om shanti shanti
1: Chidip Narayan Bhagwan ki jay. Devadi dev Deveshwar Mahadeva ki jay. Indudaran Samrat Smarav Nanji Bhagwan ki jay. Rajguru Mahamandaleshwar Acharya Mahamandaleshwar Shokanand Bharatiji Maharaj ki jay.

0: शलपुरजी महादेव की जय। महादेवेश्वर महादेव की जय। श्रीदेव नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमं अस्मदाचार्यपर्यन्तं वंदे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Purji Siddhapeet Parampara.
1: Pozdrav Sri Alakpuriji Siddhapeet Parampara.
0: My dhanot pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Mé pokorné pranám Jeho svatosti Vishwaguru Jimu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: A Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here, and good morning, afternoon and night to those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady.

अलख पुरी सा महादेव परम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन।

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायंत योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम्, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती है, एक महात्मा

0: मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो सेवा के लिए कहते हैं दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाये हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my
2: people?
1: Okay.
2: In America.
1: Okay.
2: To Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and?
2: Daily Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life.
1: Yoga
2: Foundation.
1: In.
2: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life.
2: Foundation.
1: In Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji. Swamiji. DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Que dollar?
1: Did I say?

0: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Mishri Lal ji, Brahma Rishi, P. Thawla, Nagor. Catch me?
1: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ों में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर क्या? जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरोगे। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहाँ जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्यः पूर्णोशान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अलकपुरीजी महादेव की जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

0: मात की जय।
1: अन्नपूर्णे मात की जय।
0: नाउ व्हाट डू वी कॉल पंचाक्षरी मंत्र?
2: पनसलेदन्या मंत्र।
0: पंचाक्षरी अक्षर मीन्स सिलेबल्स एंड पंच मीन्स फाइव।
2: पंच पुमेने पेत इम पर्व बेसेदा पुमेने
0: न मह शी वाय। सो दैट्स पंचाक्षरी।
2: तो पुमेने पेत लोगो नमः शिवाय।
0: सो दैट्स व्हाई भगवत पार्षद शंकराचार्य जी क्रिएटेड श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र। सो वी विल सिंग दैट नाउ।
2: सदाय बमो जपेली तो।

0: भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिदं परो द्रव्या द्रव्ये
1: जगति गदति
0: व्यस्त

0: गुरुगणाभ्यां गिरिशय स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिं
1: फलति
0: अयत्नादापाद्य त्रिभुवन भवैराग्यतिकरं दशाशो यद्बाहुन्मृतरणदण्डो परवश शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोर्वमने स्थिराया स्वभक्ते त्रिपुरहरवे स्फूर्जितमिदम् अमुष्य

याला चाचा लेता अंगुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति कला यदित्यं सुत्राम्णो वरद परमो चैरपि सति मदश्चक्रे बाण परिजन विधेय श्रीभुवन न तच्चित्त

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय हो।
0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की
1: जय हो।
0: हिंदू धर्म सम्राट श्री माधव कृष्ण भगवान की
1: जय हो।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी श्री महेश सदगुरुदेव भगवान की
1: जय हो।
0: महामंडलेश्वर स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की धर्म की
1: जय हो।
0: धर्म की
1: जय हो।
0: अधर्म का
1: नाश हो।
0: अधर्म का
1: नाश हो।
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो।
0: प्राणियों में
1: सद्भावना
0: विश्व
1: हो।
0: का
1: कल्याण
0: विश्व का
1: कल्याण
0: गौ माता की
1: जय हो।
0: गौ माता की
1: जय हो।
0: गौ हत्या

अपनित स्वरूप ओम नमो प्रभुदि प्रणमा ब्रह्मानंदनुरुर्वासे ओम शलकपुरी जी महादेव की जय देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय श्रीदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधव।

भगवानंद ब्रज सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत शुभ महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत सनातन

की जय सतगुरुदेव की जय। महामंडलेश्वर स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की जय हो की। श्री दीप नारायण भगवान की जय। सत गुरुदेव की जय।

स्थित नरयम भगवान की जय सतगुरु देव की जय हिंदू धर्म साम्र सतगुरु श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय महामंडलेश्वर स्वामी तत्पुरी जी महाराज की जय।

0: महाप्रभु जी की जय हो। श्री सियालकपुरी जी महादेव की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेव की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरु
1: ओम।